0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
2: ओह मारे गए, दोबारा देर हो गई। गड्डी चलाउन विच्चों तना नूं बाहर कड्डो अते घरों पहला ही तुर पाओ। जे तुसी गति सीमा तों तेज गड्डी चलाउंदे हो तां तुसी कानून नूं तोड़ रहे हो अते तुहानूं महंगा जुर्माना हो सकता है जां अपना लाइसेंस गुआ सकते हो। TSC वालों सुनेहा, हर किसे वास्ते सुरक्षित तरीके नाल गड्डी चला।
3: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
4: पोले ने कसूते फसाते

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम दी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल के होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
3: यार तू नाल मुंडा कौन क्या दा।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com। वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दी प्योर न्यूजीलैंड।
2: चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री-ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो। बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
3: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उना दे 5 साल दे होण तो पहला ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3 अते 4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तो पहला 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवें दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
4: टेंशन निधि टेंशन।
5: की होया?
4: इत्थे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
5: काका जी, टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
4: या 90-77-97-33
5: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
4: याद रखो 9077-9733।
5: वीवाई इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
4: हर कदम तो आड़े नाल।

0: इंश्योरेंस ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: पोले ने कसूते फसाते।
0: ओए पोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दिनाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भूलियो। ओए पोले ओए टू।
3: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
5: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: सोना चाहिदा,
6: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
7: विश्व पद्धर ते तेल दी घाट सानू सब नू प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हां। अपनी कार दी घट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों ट्रक ड्राइवरां, किसानां अते जरूरी सेवावां लई तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। ऑस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा वालों जारी।
8: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
3: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
8: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी वी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0400-25-35-45 ते।
9: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने,
10: पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
11: सूरज देवता
10: की मतलब?
11: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
10: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
11: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
4: जी की हाल है पिट दर्द दा?
5: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
4: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
6: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। fuelplan.gov.au/punjabi ਤੇ ਜਾਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ।
7: ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਲ ਲੱਗਦਾ? ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ? ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੀਜੇ ਸਟੋਨ ਮੇਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇੱਕਦਮ ਕਲਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟੋਨ ਬੈਂਚ ਟੌਪਸ ਫਾਰ ਕਿਚਨ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਂਡਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 0400 045555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
8: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
9: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
10: सूरज देवता
9: की मतलब?
10: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
9: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
10: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-8-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 10 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford!

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
3: ते किथे वज गई तेरी गड्डी
4: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे परदेश विच समझाऊंगा किवें
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते सिंक स्मैश Repair. It goes way, Lemon Hall.
5: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जीजे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने हैं डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
1: Ready, set, go! Chadston Ford. Dandenong Road te tuhanu udik reya hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty. Everest te Sadabahar Mustang. Brand new demo te quality pre-owned vehicles. Trade-in ate finance options vi available. Aho te apni navi Ford da test drive karo. Business plate lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Kori naal. Radio Hanji de hawale naal pao. 3 saal di free service. Chadston Ford. Ready, set,

0: शर्ता लागू जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
3: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त
4: टेंशन मेरी टेंशन
5: की होया
4: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
5: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
4: या 90-77-93-33
5: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
4: याद रखो 9077-9733
5: Viva Immigration and Education Consultant
4: हर कदम तुहाडे नाल
6: तुसी सुन रहे हो इस प्रोग्राम दा रिपीट ब्रॉडकास्ट

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार। ना ता

0: विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बांसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: नजर है। बोला
1: ओए पुली ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: बोले ने कसूते बसूते
1: ओए भोले ओए टू, कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: विश्व पद्धर ते तेल दी घाट सानू सब नू प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हां। अपनी कार दी घट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों ट्रक ड्राइवरां, किसानां अते जरूरी सेवावां लई तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। ऑस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा वालों जारी।
3: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
0: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
3: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0400-9-25-35-45 ते।
4: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
5: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
6: 0402-520-252 ते जाओ।
7: टेंशन निरी टेंशन।
8: की होया?
7: अथे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
8: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमीग्रेशन नू जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
7: या 90-77-97-33
8: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
7: याद रखो 9077-9733।
8: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
7: हर कदम तुहाडे नाल।
9: सोना चाहिदा?
10: भरोसा चाहिदा?
9: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा? चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
11: बेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
12: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
11: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
13: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

रेडियो हाँ जी 1674 प्रोग्राम हाँ जी मेलबर्न आस करते हाँ कि दिन थोड़ा वधिया जा रहा होएगा, चढ़ती कला च होगी, चेहरे ते होगी मुस्कुराहट, सवेरे सवेरे का समा चेहरे ते एक खुशी जरूर रखा करो। जेकर नहीं तो आओ सब तो पहला चेहरे ते खुशी लैके आइए। तो बिल्कुल इस तरह के नाल मुस्कुराहट अपने चेहरे के उत्ते सजा के रखियो, क्योंकि इसे मुस्कुराहट दे करके तुहानू होर खुशियां मिलनियां, तुहाडा दिन वधिया जाना। जो पहला बोझ है वह इसे ने हल्का करना, तो यह सब तो आसान तरीका मनिया गया सवेरे सवेरे एक्सरसाइज का, अपने आप नूं ठीक करन दा, अपने दिमाग नूं ठंडक पहुँचाउण दा, उस रब दा शुकराना करन दा। अपना ते आस पास जिहड़े भी लोग ने तुहाडे उहनां नूं नेक दिल होण दा अहसास कराउण दा इह बड़ा वधिया एक सस्ता जिहा हथियार है, इहनूं जरूर वरत लिया करो। नहीं तो कहिंदे ने जिहड़ी चीज़ आपां नहीं वरतदे वह हौली हौली साढ़े कोलों चली जाती है, वह देने वाला दाता वह साढ़े कोलों वह चीज़ा वापस लै लेंदा जिहड़ियां आपां वरतदे नहीं। समा हो चुका अज की कहानी का, मां अक्सर ही दस्या करती सी पुत किसे वेले असीं दाते होया करते सी, आ वेख हालातां ने हुण मंगते बना दिता। पर मैनू बहुती समझ नहीं सी लगती मां कहिंदी की आ। एक दिन मां ने दिहाड़ी लाउण गए बाप तों चोरी चेतावनी दित्ती, प्यो नूं ना दसी, इन्ना कह के हाथ दे उत्ते चवानी रख दित्ती, आखण लगी फलूदे वाली कुल्फी खा ली ते नाले गल सुन वापस परत दिया निक्के भरा लई भी कुछ लैंदा आवे, भले जमाने सी कदर सी जवानी दी, पर निक्का तां खेड़े ही पै गया, मैं ते नाल ही जाना, मैं भी मस्या वेखणी आ, मैं भी वीर दे नाल ही जाऊं, बस फिर की सी लैके जाना ही पिया। निक्का जो होया निक्कियां दी जिद बड़ी भैड़ी हुंदी, ये रोंदे वेखे भी नहीं जांदे, बदो बदी टांगे दे विच आण बैठा, मां पिछों आवाजा मारदी रही वे निक्किया वे ना जा वे वीर वड्डा, कई गल्लां दे विच ही रह गईआं। हुण उह कोल बैठा थोड़ी देर बाद रोणों चुप कर गया, गल्लां ते चाहे गलेडू हले जम्मे सी पर बड़ी अजीब जी खुशी सी उहदे चेहरे उत्ते, शायद कदी किसे नूं इदां तुसीं वेख्या होवे। रोण तो बाद जिहड़ी खुश होण वाली सूरत है बड़ी प्यारी लगती है, पर मैनूं उहदे उत्ते गुस्सा आ रहा है, शायद मैं कल्ला जाना चाहुंदा सी, मैं क्या भी चल हेठां उतर तू मां कोल रह, पर उहदे ते कोई असर ना होया। मसिया पहुंच सब तो पहला खडौलियां वाली दुकान वल नूं भज्जा, एक चीज तां तय सी इह पतंदर इसे करके भज के टांगे च बैठा है। खडौणे वाली दुकान दे उत्ते उस चाबीयारी कार नूं हथ पाया जिहड़ी अठियानी दी सी ते मेरे कोल सी जवानी, बांह फड़ के निक्के नूं अगे तोर लिया, आख्या निक्किया महंगी आ ओए साढ़े कोल पैसे घट ने, उधरों कढ़िया ते अगे पंगूड़े आ गए। पुछया तां कहिंदे 10 पैसे एक झूठे दे, सोचा जे इत्थे खर्च ले ते वापस टांगे जोगे नहीं बचने,
ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹਾਨਾ

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
4: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
0: Go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik reha hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options be available. Aao te apni navi Ford da test drive karo, business fleet lai gal karo, vehicle experts Tim Forbes ya Kori naal. Radio Hanji de hawale naal pao, 10 saal di free service. Chadston Ford, ready, set, Ford.
5: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: Benji, की हाल है पेट दर्द दा?
6: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू इदे बारे दसन लई।
2: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्चस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।
1: ਮਾਡਰਨ ਲਾਂਡਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਸਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 0400 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
2: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल के होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
3: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332802 52

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
0: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ, आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्त लागू।
1: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332802552 ते।
2: Not it, better.

ट्रैवल इंडिया त्रुगनिना विच अपनी हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालिया तो जदा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आडे नाल
2: रंग रंगीली दुनिया दा है चार दिना दा मेला सोने मुख तो ला उदासी भुल के जगत झमेला ओए चिंता चिखा समान दोस्तो रोग ना डाडा लाइए जल्ली रब तो डर के रहिए आओ नचिए गाइए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। हां जी।

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार तौलै उपर केता पार। धरती होर प्रै होर होर तिस्ते पार तलै कमन जोर। जी जात रंगा के नाव समना लिखिया बुढ़ी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होए। केता तान स्वाल्यो रूप केती दात जाने कवन कूत। कीता

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

जो तुद पावै साई फली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सबको आख है एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक देखो आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेख होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह।

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै फीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, कां किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कह पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई।

तीरे सुनियार एरन मत वेद हथियार पौ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित काल करिए शब्द सची टकसा।

कालांकान अनुभूत अंग अभावं गत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज भेषय के आगंज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सलीख में गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित तो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ।

गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनाश त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानिय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो।

श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवतार इसार की तार बछैया तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनंद निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे

0: साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पूछा को शीश नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे।

मारिए आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रासन वरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरिया तुझो करियो रच्छा, राख

आए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार कार चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तजकिनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फू राजा है बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रक्षा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

बाणिया सिरबाणी जिन को नदर कर्म होवै हृदय तिना सुमाणी पीवो अमृत सदारो हर रंग जपो सारंग पाणी कह ना।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंधन हर

जैसी अगन उदो मैं तैसी वार माया, माया अगन सभी को जई करता है खेल लचाया, जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया, कह नानक।

रंग माण लै प्यारिया जा जोबन नौ हुला दिन थोरड़े थके भया पराना चोला। मारे कहिंदे ने आनंद लै अज इन्हां न्याणियां दे पिछे करके संगत विच नहीं ना हुंदा भी कम पिछे पै जाणा न्याणियां दे घाट पऊगी इन्हां दे सुख ना किते घट जाण। इन्हां तैनू बाहों फड़ के संगत विच नहीं लै के आउणा जे आखे भी इन्हां करके मैं पहलो इन्हां दे कम सवार लां। ना ना इन्हां दे भोगां दी भी उड़ीक ना रखी भी जदों मैं चढ़ाई कर गया ते पता नहीं किड्डा कु वधिया मगरों मैनू मुक्त करा देणगे। इत्थे किहे दे सिर ते गल नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने आख्या आपण हथी आपण आपे ही काज सवारिया। आपे बाणी पढ़ अपनी किरत विचों आपे गुरसिखां नूं प्रसाद छका ते आपे ही उठ के अमृत वेले जप सतनाम श्री वाहिगुरु जुड़ जाएगा ते सुखां दुखां दा अंत हो जाएगा। जे विछड़िया रहा ते पछतावा रह जाएगा। कीवें पछतावा फिर फरीद साहब जी दस रहे ने आओ आरंभ तो शब्द दी

दर्शन दर्शन दी इच्छा है। हे महाराज ते जे तुसी एक बारी बुला लो तुसी आ जाओ ते मेनू इना सुख मिलदा जिदा के शाहूकार ने एक पद विच लखा रुपये वट लवे ओ लखा रुपया लैके अपने घर जावे ते ओदी अड्डी थले नी ना लगदी खुशी नाल। जे तू एक बारी आवाज मारे मेरे मालिका ते इनी मेरे अंदर खुशी हुंदी है जिदा मैं लखा

0: तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं। किसे को एक वारी काम जाओ दो वारी जाओ कर देगा। जिदा बुवे नु तुही राह पा लिया ना भी इन्हें काम अगे करते सी मैं फेर जाना अगली वारी अगला बुआ नहीं खोलदा मुंह नहीं करदा भावे कोई भी होवे पर मेरा मालक एडा दयालु आ जदों झोली अड्डो उस वेले भर दंदे तेरे वर्गा मेनू संसार ते होर नहीं को देखदा।
1: मैं दसिहो मारक संत हो क्यों प्रभु मिलाइया।
0: वो जेड़ा दयालु कृपालु आ उनू किद्दां मिलां मेनू जुगती नहीं आउंदी। हे संत जनो गुरमुखो प्यारे हो तुसी मिले होए हो तुसी मेनू तरीका दसो भी मैं

0: नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो आपके दिन को पॉजिटिव शुरुआत देने के लिए अध्यात्म के सागर से ज्ञान के मोती चुनकर आप तक लाता है। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि इस समय हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं या प्रतिदिन जुड़ते हैं, क्योंकि जीवन में कुछ भी केवल संयोग से नहीं होता। श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार अवसर प्राप्त करता है। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति वास्तव में हमारे भाग्य में होती है, वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आ ही जाती है, और जो हमारे लिए नहीं है वह सामने आकर भी अधिक समय तक हमारे पास नहीं ठहरती। जैसा हमारा दिमाग सोचता है वैसे ही हमारा दिन निकलता है, हमारा शरीर भी वैसे ही एक्ट करता है। कैसे, जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। तो जैसा आप संग करेंगे, जो आप सोचते हैं, हमारे जीवन में उसके अनुसार ही सब घटित होता है। इसलिए जीवन में हमें सदैव पॉजिटिव लोगों के संग रहना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए, भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद यद भावम स्मरण भाव तय जनते कलेवरम, यानी मनुष्य जिस भाव का निरंतर चिंतन करता है उसका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। एक बार एक कैदी को फांसी होने वाली थी, तो जेलर उसके पास आया, कुछ एक डॉक्टर उसके पास थे। उसने पूछा कि तुम मरने वाले हो, फांसी होने वाली है, क्या हम तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? अगर आप हाँ बोलोगे तो हम करेंगे। कैदी बोला, हाँ मरना तो है, कैसा एक्सपेरिमेंट करना है आपको? तो डॉक्टर ने बोला कि अभी फांसी होने वाली है, तुम्हारे गले में फंदा लटकाया जाएगा, तुम्हारा सांस धीरे धीरे घुटने लगेगा, हो सकता है तुम्हारे गर्दन की हड्डी भी टूट जाए, कुछ एक मिनट या ज्यादा भी तुम्हें तकलीफ होगी मरने में। और दूसरा ऑप्शन यह है कि तुमको एक कोबरा से डसवाया जाएगा, बस जैसे एक चींटी काटती है उतना दर्द होगा और तुम एक सेकंड में खत्म, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो कैसे मरना चाहोगे? तो कैदी बोला, दूसरा ऑप्शन सही है। उसे एक कुर्सी पर बिठाया गया। कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति कोबरा सांप लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोबरा लेकर उसके पास आया और उससे पूछा, क्या तुम तैयार हो? वो क्या बोला, बताता हूं थोड़ी देर में, मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो कोबरा को उस कैदी के पास लाया गया और उससे पूछा गया कि आर यू रेडी, तुम तैयार हो? वो बोला यस। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसकी बाजू पर दो नुकीली सुइयों को चुभाया गया। वह तुरंत मर भी गया। उसे कोबरा ने नहीं बल्कि सामान्य सुइयां चुभाई गई, किंतु उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कोबरा उसको डसेगा और वो मर जाएगा। यही उसकी मृत्यु का कारण बना। इस घटना के बाद डॉक्टरों को एक चौंकाने वाली बात और सामने आई। जब उस कैदी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में जहर मिला, जबकि सांप ने तो उसे छुआ तक नहीं था। तो ये थी हमारे दिमाग की ताकत। जैसा आप सोचते हैं, शरीर भी उसके अनुसार काम करना आरंभ कर देता है। श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में समझाते हैं, ध्यायतो विषान पुंसा, अर्थात जिस विषय में मनुष्य बार बार चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध और फिर दुखों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। सुबह उठते ही मोबाइल पर नेगेटिविटी देखना तो उसका मन चिंता और भय से भर जाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति कुछ मिनट भगवान का स्मरण करे, उसके अंदर भीतर और बाहर उत्साह का संचार होगा। बाहर की परिस्थितियां दोनों के लिए समान हो सकती हैं, किंतु मन की स्थिति अलग होती है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
1: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

0: भी छिड़क दी है दी, मंदी
1: मंदी
0: मंदी मंदी
1: मंदी
0: मंदी
1: देवी
0: चो नच दी,
1: चुना
0: चो नच दी मेरे तंबक काले पैंदी।
2: मैं देखता है
1: वाह,
2: तो
1: बल्ले
2: उच्चारण
0: बल्ले बल्ले
2: उच्चारण
0: साहब
2: कितना सोना।
0: शाबाश, चक दो
1: ओ चक
2: चक
1: दे
2: दो
1: बलबले।
0: गाया सुनाउन दा
1: हाँ जी
0: जेड़ा मैं सुना रही सी ना गाना, ए करेक्ट वे सुनाउन
2: हाँ
1: दा।
2: जी
1: करेक्ट
2: हाँ जी,
1: वे हाँ। नाले मैं
2: तमक झिड़के बहुत औखे शब्द ने जेड़े तुसी बड़े सहजे ही है ना बोल देने हो।
1: नाले मैंने तो
0: मेनू
2: शाबाश।
0: मम्मा, मैं पहला दो शब्द ओ तो गलत कर दी, फिर मम्मा ने मेनू क्या, मेनू मम्मा ने दसे, फिर मैं गाया, फिर मेनू आ गए।
1: हाँ, क्योंकि नाले तुसी तो खुद टीचर हो ना
0: हाँ
2: छोटे बच्चों के।
0: जी
1: नहीं पर इंग्लिश टीचर है ना, सॉरी सच, ये तो पंजाबी दी बोली है।
2: हाँ,
0: हाँ जी,
2: कंफ्यूजन ना।
0: बट सुनो पता कि मैं बहुत सा बेबी हूँ, अभी
1: अच्छा बेबी बॉय।
0: मैं बड़ी हूँ बेबी,
1: ओह ओके ओके ओके,
2: ठीक है,
1: थैंक यू बॉस
0: मैं
1: बेबी,
0: बड़ी हूँ। बट ओके बाय बाय,
1: थैंक यू
2: लीडिंग
1: बॉस,
2: फ्रॉम द फ्रंट,
1: थैंक यू बॉस, थैंक यू। ते नेक्स्ट साढ़े नाल अरनव, उस तो बाद फिर तवनीत, तुहाडी वारी। सत श्री अकाल अरनव, तुसीं आउंदे रहो।
3: हेलो अंकल जी, सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री
2: सत
3: अकाल,
2: श्री
1: सत
2: अकाल
1: श्री अकाल
2: जी।
1: अरनव,
3: ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ?
1: ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ?
3: ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ।
1: ਓਕੇ, ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ?
3: ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਇੱਕ ਬਿਜਾਰਤ।
1: ਓਕੇ।
3: ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਸਕਦੇ?
2: ਅਕਲ।
1: वायरस जहा लगता मैनू तो अगल उगल तो कितने अजकल
2: पाइया पक्की नहीं लगती कदम।
1: ये तो मैनू कोई ना इंसाफलेंजा जहा लगता मैनू
2: भी अगे ए बी सी होना
1: है ना, इंफलुएंजा लगता मैनू अरना वे तो
2: नहीं कुछ होर होना,
1: खंघ भी हो सकती फिर।
2: उम्र हो गई हूँ सियाने वाली, मुड़ के फिर दमा होर अट नौ गिण देनी है गोडिया जोड़ा का दर्द।
1: ये भी छूत छात की पक्की गल है, गब्ब मारी तो कोई छूत छात ही है, नहीं तो गल पक्की
2: छूत छा ही रह गया हूं तो।
1: अरनव हार गई यार,
3: वो हैगा प्यार।
2: देखा जै, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
1: मिसिंग आ मिसिंग।
2: दिल नहीं कह रहा, दिल जिसे बेपनाह मोहब्बत करता था अब उसी से पनाह चाहता।
1: वाह वाह वाह।
3: मैं एक गल दसनी ही था।
1: हाँ जी।
3: मेरे पापा नी ना ठीक नहीं है।
1: ओहो की गल होगी?
3: हॉस्पिटल चा उन्हां लई अरदास करा प्लीज
1: जी। पुतो अपन जरूर सारे जने अरदास करांगे पी छेती छेती अरनव दे पापा ठीक हो के घर आउण, ते सानू तुसीं गुड न्यूज छेती छेती दिओ।
2: ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤ,
1: ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ।
3: ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ,
2: ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਵਨੀਤ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਪਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਪਿੱਕ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਵਨੀਤ।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਐਸ਼ਲੀਨ?
0: ਹਾਂਜੀ।
1: ਓਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ।
0: ਹਾਂਜੀ।
1: ਓਹ ਫਿਰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਅੱਜ?
0: ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
1: ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
0: ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਫੇਲਾ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ।
1: ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਗਿਫਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ?
2: ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ।
0: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਊਗੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ।
1: ਅੱਛਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਊਗੇ? ਓਕੇ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ। ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਿਖਾਓਗੇ ਵੀਕਐਂਡ
2: ਤੇ? ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ।
1: ਚਲੋ थैंक यू, फिर मैं वेट
0: कर। कल साडी वारी पेला लेनी।
1: पुत ये बड़ा औखा काम है, तुही ना आ ग्रुप बनया ना ताडा, तुही आपस विच उत्थे पगाटा करो। मेरा की है, मैं तो सिर्फ ना ही लेने भी हुण आ जाओ ते हुण आ जाओ, है ना। है ना, मम्मा नूं कहो ग्रुप बनया ना, उहदे विच तुही प्लीज़ आप तुही डिस्कशनज करो, तुही पैनल बनाओ, तो मेरी भी थोड़ी जी जान सौखी करो। मैनू तो इतने मैसेज तो मैसेज वरन डिया हुंदा भी मेरी वारी पहला ले लो, मैनू नहीं लिया तो की करिया हुण दस मैं।
2: कदे कदे प्रीत इंदर अंकल भी पहला आ जाते, ये आपकी बारी पहाड़ दे विचों
1: की करी दस। एचलिन तू हेल्प कर मेरी कुड़िए, है करेंगी
2: लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
1: है।
2: हाँ जी हाँ जी करूँगी, करूँगी। की सुनाओगे आज फिर?
1: हाँ,
0: एक बुजालत।
1: हाँ जी।
0: लाल सुई पोटली मैं वेख वेख कशोवा, हाथ लावा ता पिटन लगी, हाँ उई मैं अम्मा वन मोई।
1: उई अम्मा में मोई। ये सुने ही थे आगी या मैं?
2: पर आउं दी नहीं।
0: सब्जी चपाई दी।
1: हैं?
0: सब्जी चपाई
1: दी। ओ मिर्च?
0: ये लाल वांगड़ी है।
1: लाल वांगड़ी है, लाल मिर्च होगी फिर।
2: लाल मिर्च हो सकती फिर।
1: हैं?
0: हाँ जी।
1: तो खोल के दाह दे।
2: चिली, जस्ट चिल।
1: चिली। रेड चिली।
2: हाँ, नारना चिली तो नारकना जस्ट चिल।
1: थैंक यू एश्लिन।
0: तू यहाँ जब। और आंसर नहीं है।
1: अच्छा सारा आंसर नहीं है। चलो हार गए।
0: रेड चिली है बट।
1: रेड चिली।
0: हाँ जी।
1: हाँ। तो क्या था रेड चिली?
2: बसंती तुम्हारा नाम क्या है?
1: हाँ। आज तू ही ना बहुत क्लियर बोलिया वा, थैंक यू, एदा बोलिया करो।
0: ओके
1: ठीक है, ते नेक्स्ट के दिवार
0: गल कर लो।
1: हाँ जी।
2: सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल।